जीवा विसर मर जाओ आखने औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूखाए खाए चलिया है दुख सो क्यों विसर मेरी माए साचा साहिब साचा न रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखन पाहे वड्डा न होवै घाट न जाए ना ओह मरै न होवै सोग दिंदा रहै न चुकै भोग गुण एहो।

प्रत पारा अमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाद मोहे मचाम हो सुखी बसाई मोरो परिवार सेवक सिख सबाई करतारा मोर छाव निज कर दई करे सब अर्म को आज संगे पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बरचा हो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाद मुझे अबरे मरण काल का त्रांत न मरिया ऊ जो सदा हमारी पछाऊ श्री अस तुझ जो कर हो रचा राख ले हम राखण हारे साहु संसहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो परी चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा अवतराऊ काल पाए शिवजू अवतराऊ काल पाए कर विष्णु प्रकाशाऊ सकल काल का की आत्मासा जमन काल योगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार हता हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैतो जथन उपजायो आदि अंतो एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सब कुन को साव गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोह बत कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चिट्टी ते कुंतरे असूलाओ सापर कृपा दृष्ट कर फूलाओ संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर बिछाने कट कट के पट पट की जन जब कर करा करता रहा प्रजा तर तब दी हूँ पारा जब या कर कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जिते बदन श्रेष्ठ सब तर आप अपनी बुझो चार तुम सब

दिनी कहु फूल राजा हो बैठाओ कहु सिमट पर शंकर कठाओ शिगरी सेठ दिखाई अचम्भव आदि जगाद स्वरूप सजम्भव।

कहता जे अस तो जो तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हम मरे पुरख जवन पग भरे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याए है ताके काल निकट नह अह रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरंत काला कृपा दुष्ट तन जाहिन हर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुट चाचव सकर न कोई एक बार जिंत मैं संभाराओ काल फास्ते ताहु बाराओ जिन नर नाम तिहारो कहाओ दर्द दुहर दुख तेरा खड़ग केत में शरण तिहारी आप घात दल हो बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लहो बचाई कृपा करी हम पर जग माताओ ग्रंथ करा पूर्ण सुभ राताओ किल बिख सकल देह को हरताओ दुट दुखी अन को छाय करता श्री अस्तो जी जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन वांछित फल पावे सोई दुख नत सब आपत कोई अड़ल सुने गंग जो जाहे सुरसन पावई सुने मूड़ चित लाए चतरता आवई दुख दर्द पाओ निकट नंग तिन नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहसपुण जय अर्ध सहसपुण तीन कह जाय भाद्रव सुदी अष्टमी रव बारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चित्र पख्याने त्रियं चित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच त्रित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त आप जून दोहरा दास जान कर दास पान की जा कृपा पारो आप हाथ दा राख मोहे मन क्रम बचन बिचारो चाओ पाई मैं अग्रस प्रथम नाऊ केशन बेशन कभू न थाऊ कान सुने पहचान तन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महाकाल रखबार हमारो महलो मैं किंकर थारो अपना जानो करो रखबार बाहे गह की लाज विचार अपना जानो मजाय प्रत परियाय चुन चुन सत्र हमारे मरिया देग तेग जग में दो चलाए राखे आप मोहे और नंद लाए तुम मम करो सदा प्रतभारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान पना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीबन बाजा

सोइया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह माते एक न माने ओ सिमरत शास्त्र बेद समय बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री अस्पान कृपा तुमरी काढ़ो मैं न कहो सब तो है बखाने ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वारो बाहे गहे की लाजे अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गवणिया शब्द ता गावो हरि के राम मन दुनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु ने पाया हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सरना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला सम्रत स्वामी सो के मन हम सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा से

जिस मृत सुख होए सगले दुख जाए। इस साहिब की टेक नानक मरै माहे, जिस से मृत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: प्रमुख ज्ञान है।
1: गुरु सोरी साहिब सिंह जी अज का दिहाड़ा धन धन साहब सतगुरु गुरु नानक जगत गुरु बाबा तिन्हां दे विआह पुरब का दिहाड़ा है। वो दिन जिस दिन सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी तलवंडी तो अपने सारे परिवार सज्जणा मित्रां दे नाल लाड़े दे रूप विच बटाले ढुके सन और मूल चंद दी सपुत्री बीबी सुलखणी जी जो साडे माता जी माता सुलखणी जी ने उन्हां नूं परणाउण वास्ते विआहण वास्ते आए सन। अज सारा दिन बटाले विखे बहुत वड्डे समागम होए, तीन दिन तो चल रहे ने, हर साल समागम चलते ने। सुल्तानपुर तो बरात चढ़ती है नगर कीर्तन के रूप में और बटाले पहुँचती है, वो एक बहुत ही अलौकिक नज़ारा दर्शन करने वाला होंदा है। जो दोनों पासों तो संगत शब्द की कनकोर विच एक दूसरे में मिलती ने, वो एक कहन सुन तो परे का नज़ारा है। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के विआह पुरब के संबंध में भी आप अज का जो कीर्तन है वो करना है। पहला शब्द के हर प्रभ काज रचाया
2: गुरमुख
1: गुरमुख व्याण आया। वो गुरमुख व्याण आया जिदे बारे भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचन किया, गुरमुख कल विच प्रगट हुआ। वो जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह आप नारायण कला धार जग में परवरे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं आओ, उन्हां दा विआह दा खुशियां दा दिहाड़ा याद करदे हुए शब्द कीर्तन में चढ़िए जी।

तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्णना साकौ, तू ठाकुर ऊच भगवाना, ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी, उदरत कमन हमारी, साध संग नानक जस गायो,

पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा परपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा परपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। श्लोक गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई लाया खेले।

गए मसकत काल नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक से मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

हर जप जप जप महा हर हर जगन्नाथ जगलहा तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे जप नानक भगत महाराम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी ओ सोठ महला पंजवा गुरका शब्द खवाड़े चौकी चौगर दुआड़े राम नाम लागा जामन लज्जा कर प्रभु प्रभु जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख बधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ता किसे मन व्यथी जासी अंत करे तेरे दासा जा पूर्ण होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वो मिल गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारा राम कर दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेटिया जन बणत बनाई राम नाम औखा दिया एकल बुलाई राख ली तन रखन हार सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा पाई प्रभ है सहाय श्लोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत खड़ा होना तू न चुटै लिख न जाहियो दूत श्लोक महला पंजवा मन मह चितव चितवनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन का हर हर देहो नानक के मीत सोहिला रा गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते काहो विचारो तित कर गाव सोहिला सिवरे हो सिरजन हारो तुम गाव हो मेरे ने पौका सोहिला कुमारी जित सोहिला सदा सुख रहाओ नित नित जीअड़े समालियन देखा कर दे बनहार तेरे दाना कीमत ना पवै इस दाते कवन संभार संबत साहा लिखे मिल कर पाव तेलो देहो सजन असीसड़िया जो होवै साह स्यो मेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक सिद्ध अबन रागासा महला पहला छे अखर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसन एक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो रहाओ विश्व चसे आखड़िया पहरा तिती बारी माह होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंदी पक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चबरो करे सगल बनराय फूला ज्योति कैसी आरती होए पवखना तेरी आरती अनहता सदवा जंत भेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त ननायक तोहे सहस पद बिमल नन एक पद गंत बिन सहस्तव गंत चल तुमोहि सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिसदा चानन सब मह चानन होए गुरसाखी ज्योत प्रगट होए ज्योत भावै सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोगित मनो अन दिन मोहे आहि प्यासा कृपा जल देहे नानक सर को होए जाते तेरा नावा सारा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बह भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जाने
ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬਹਿ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਬੜ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ, ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਵੀਹਾ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਆਉ ਦਿਕਟੈ ਦਿਨ ਸਿਰੇ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸੰਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਜਗਾਇ ਪਿਆ ਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਕੂ ਆਏ ਸੋਇ ਬਿਹਾ, ਜਿਉ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਪੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ।

कथना कथी नावै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोटा देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखह मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अग्गा रखी है जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार

गोपीता गोविंदा आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह किते किते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव किते आखह आखण पाहे किते कह कह ठुठ जाहे किते किते होर क्रेहे ताख न सकह केई के जेवड पावै तेवड होए नानक जाना साचा सोए जे को आख बोल विगाड़ ता लिखी है सिर गावारा गावार सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा किते वामन हारे किते राग परी स्यो कही अन किते गावन हारे गाव है तोहनु पौन पानी बह संतर गाव है राजा धर्म दुआरे गाव है चित गोपत लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गाव है ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गाव है इंद दासन बैठे देवत्यां दर नाले गाव है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गाव है वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सरा जूद वेदा नाले गाव है मोहनिया मन मोहना सुरगा मछ पय आले गावन रत्नो पाए तेरे अठ फठ तीर्थ नाले गाव है जोध महाबल सूरा गाव है खानी चारे गाव है खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुद नौ गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते गावन से मैं चित नावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखा किता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पा तिसा हो साह पा तिसाहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह बेभूता खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीता आदेश तिसा आदेश आद नील नाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण कटकट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध वरासाद

ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਰਬੋਬਾਰਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ, ਜਾਕੇ ਕਰਨ ਹੈ, ਮਨਮਾਨਿਆ ਹੈ, ਜੁਗ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈ, ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਪਾਸਿਆ ਹੈ, ਸਰਬਨਾਸਿਆ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੰ ਭਰ ਹੈ, ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ, ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ, ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਹੈ, ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ, ਥਪਾ ਥਪ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ, ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੰ ਭਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਲਾ ਹੈ, ਨਿਪਨਾਇਕ ਹੈ, ਸਰਬਪਾਇਕ ਹੈ, ਭਵਭੰਜਨ ਹੈ, ਰਗੰਜਨ ਹੈ, ਰਿਪਤਾਪਨ ਹੈ, ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ, ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸਰਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ, ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ, ਸਰਬਾਤਮ ਹੈ, ਆਤਮਵਾਸ ਹੈ, ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ, ਓ ਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਥਾਮ ਸੰਗ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਯੁੱਧ ਯੁੱਧੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ, ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਅਨਾਦੰ ਬੇਭੂਤੇ, ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ, ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ, ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬਾਂਕੇ, ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ, ਏਕ ਸ਼੍ਰੀ ਛੰਦ ਜਲ ਭਹਿਬ ਭੂਜੂ ਨਸ ਕਾਸ ਗੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੱਖ ਕਾਲ ਦਿਆਲ ਲੇਖ ਭੇਖ ਨਾਮ ਕਾਮ ਗਾਹ ਟਾਹ ਨਾਥੇ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨਰਾਗੇ ਨਰੰਗੇ ਨਰੂਪੇ ਨਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰ ਅਪਰਮੰ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਪੋ ਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੇਂ ਬਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੋਧਰਮੰ ਬਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀਮ ਲੁਕਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬੇਭੂਤੇ ਅਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਨਿਆਮ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬਜੁਗਤੇ ਦੋਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾਂਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਭੂਤੇ ਦੋਕਾਲੰ ਪਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾਂਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੁਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵਕ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਯੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁੱਧ ਸੁਧਾ ਦੇਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ ਕੋ ਨ ਦੇਖੀ ਅਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਕਰਤੀ ਬਿਨੇ ਕਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕਉ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਭਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨੰਗ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦੇਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜ ਢੋਲ ਮੇਰੇ ਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜਗ ਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨਾ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਸੇਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਕ ਤੇ ਬੁਕਰਾਨ ਜੇ ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸੁਭਾਨ ਕੇ ਭੇਖ ਹੈ ਪਾਉਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੁ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨ ਦੇਖੈ
सुद सिपाहा दुरंत दुबाहा सुसाज सनाहा दुर्जान दलैंग भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख लेना हलैंग तोर आरीन बरोन मवासना माते मतंगन मान मलाएंगे श्रीपा श्री भगवान कृपा बेना त्याग जहान निदान चलाएंगे बीरा पार बड़े बरियार बिचार हसार की तार पछैया तोर देश मलिंद मवासना माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाच कनेक सो एक देवैया दानव दे फिनिंदन साचर भूत भविख भवान जपैंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुहना पापन के बहु पुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिरा जग सत्तर स्वभाव लोक जपैंगे मानवेंद्र गजेंद्र निराध प जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सच्ची पात अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रास हैं पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद का बैठयो भक्त ध्यान लगायो नाथ फिरयो लिए सात समुंदरन लो गयो पर लोग गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कैसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरेल टकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछाह को शीस नेवायो को भूतान को पूजत है पासा को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पासा को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबेओ बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहा हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबैत मुकाव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसा मोर परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करी है सब बैरन कवाज संगरी है पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याहूं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतरा हमारे मारी है आप हाथ दै मुझे बरी है मरन काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करी है हो रक्षा राख ले हो मोहे राख नहारे साहिब संत साहे प्यारे दीन बंदा दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बेसन प्रकाशा सगल काल का की आत्मासा जमन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदंत एकै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिटी ते कुंचरा सथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला
संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत निरालमा जानत बेद भेदार आलमा निरंकार निर्विकार निरलंब आद अनिल अनाद असंभ ता का मूड उचारत भेदा जा को भेद न पावत बेदा ताकाओ कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन भिन तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूपा नूप सरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाय चम भव जुगा स्वरूप संयम भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सपटारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाहा छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठौर मोहो हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किल बिख सगल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांच फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़ेला सुनै गुंग जोई आहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चितलाए चतुरतावई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहै हो जो या की एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजैर्द सहस पुन तीन कहिजै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमरित शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जान्यो श्री अस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार का

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडा विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद।

एक करे मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्टि निहाल करे राम गोदास गुरु जगतारण को गुरजोत अर्जुन माए तरे जग और नयाह महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जन

जय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै नित पुराण बांचिए हैं वेद ब्रह्मा मुख गावै अजय चवर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर छत्र आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो रघुवंश जगत जग संचरियो सो कवन कह श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो।

ता का भिख को होए तिसका भोजन नानका वरड़ा पाए कोए। हुआ पंडित जोत की वेद पढ़ा मुखचार नमा खाना विच जानी है अपने चज विचार। ब्राह्मण कैली घात कंजका अनचारी का तान फिटक फिटका घोड़ बदिया सदा सदा अभिमान। आए ते जाए मिसर नानका एक नाम सब बुद्धि जालियां एक रह तत् ज्ञान। माथे जो तुर लिखिया सो मिट न सकै कोए नानक जो लिखिया सो वर्तदा सो बूझै जिसनु नदर होए। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े लालच लग धंधा माया मूनी अंतर तृष्णा अग। जिन्ना वेल न तुंबड़ी माया ठगे ठग मनमुख बंद चलाई है नाम लिही वग सग।

पाखंड सब कर्म कराए, मन हृदय कपट कमाए, खेत शरीर जो बीजिए सुवंत खलुआ आए। नानक की प्रभ बेनती हर भावे बख्श मिलाए, मन आमन जानन सुजई न सुजह दरबार।

सब बेक रह दुख सुख एक समानो तिना नदरी एक आया सब आत्म राम पछाण मनमुख बालक बिरद समान है निरंतर हर सुरत नाही विच होमै करम कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख अच्छे निर्मले गुर कै सह शब्द सुभाए ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सतगुर पाए मनमुख जूठ न उतरै जे सो धोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर कै अंक समाए बुरा कहे सो के हस जाए आपने रोहे आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़ा लुजै गुरमुख होए ते सब कुछ सुजै नानक गुरमुख मन स्यों लुजै जिना सतगुर पुरख न सेवियो सबद न कीतो विचार

दर्शन को बल जाए। सतगुरु विच वड्डियां वड्याईयां भाई, करम लाए तां पाए। एक हुकम माना जानी भाई, दूजे पाए सुन फिराए। संगत ढोई न मिलह भाई, बैसन मिलै न था। नानक हुकम तना मनाए सी भाई।

नानक ले मिलाए मैं जाचक दी जय नाम हर। गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करै साई भगत होवै गुरमुख होवै सो करे विचार गुरमुख।

सृजना गुर पीरा की चाकरी मां करड़ी सुखसार नदर करे जिस अपनी तसलाए हेत प्यार सतगुर की सेवा लगिया भौजल तर संसार मन चंदिया फल पाए सी।

जाए। नानक हुक्म है बुझै तिन्ना रास होए, सतगुर ते सोजी पाए, सब कुछ तिथि होया ज्यों तिसै धीर जाए। सतगुर विच अमृत नाम है, अमृत कह कहाए, गुरमती नाम निर्मले निर्मल नाम ते आए। अमृत बाणी तत है, गुरमुख वसै मन आए, हृदय कमल प्रगासया ज्योति ज्योत समाए। नानक सतगुर तिन को मेले ओन, जिन तुर मस्तक भाग लिखाए, अंतर तृष्णा अग है, मन मुख भुख न जाए, मोह कुटुंब सब कूड़ है, कूड़ रहा लिपटाए। अनुदिन चिंता चिंतवै, चिंता बद्धा जाए, जमण मरण न चुकी हो मैं कर्म कमाए। गौर सरणाई उबरै, नानक लय छुड़ाए। सतगुरु पुरख त्याय दा सत्संग, सतगुरु पाए सत्संग, सतगुरु सेव दे हर मेले गुल में गुर में लाए। ए भोजल जगत संसार है, गुरु बोएत नाम तराए, गुरु सिखी भाणा मन्या गुरु पूरा पारण गाए। गुरु सिखा की हार तोड़ दे, हम पापी भी गत पाए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुरु नानक मिलिया आए, जम कंकर मार बिदारे, हर दर गह ले छड़ाए। गुरु सिखा नु सब

नानक सुख आनंद पे प्रभु की मन रजाए। गुरपुरा जिन सिमरिया से पहे निहाल, नानक नाम आराधना कारज आवै रास।

खुबड़ी कुथाए मिट्टी ग्रण कुमंतरिया नानक से उबरे जिन्ना भाग मथाए सुतड़े सुखी सवंग जो रते सह अपने प्रेम विशोहा तनी सो अठे पहर लवन।

पंचनार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करे आई बसंती संदूर सुहाई सर सहरी लै पार जा संग लाई पंचों वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान ओ आए बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा

और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर कष्ट मेघ राग में गावे पांचों संग बरंगण लावे सोरठ गुण।

सहस ठारह कहन कतेबा सलो एक तात लेखा हुए त लिखिया लेखा हुए विणा सो नानक वड्डा खिया आपे जाने आप सालाहि सालाहे ती सुरत ना पाईया नदिया तवाह पवह समुंद न जानिया समुंद साह सुलतान गिरह सेती माल तान कीड़ी तुल न हो बनी जे तिस मन हो न वी।

ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोडानंद सर्म खंड की बाणी रूपा तथा घाट घड़ी बोहत अनूपा ताकिया गल्लां कथिया ना जाहे जे को कह पिछा पछताए तथा घड़ी सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़ी सुरा सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथा होर ना कोई होर तिथा जोध महाबल सूर तिन महराम रहया भरपूर तिथा सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरह न ठग जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथा भगत वसै के लोक रह नंद सच्चा मन सोए

कीर्तन की इतनी सेवा प्रवान करनी जी पुलचक दिखे मां सतगुरु गरीब नवाज कृपा करन। स्वर्गवासी सरदार लखन सिंह जी संधु जिन्हां दी प्यारी मिठी याद विच परिवार वालों श्री अखंड पाठ साहबां दे भोग पाए गए सोने दीवान सजी विश्वी आत्मा दा सतगुरु सदा वास्ते अपने चरणा कमलों विखे मेल बनाई रखन। पिछे परिवार में चढ़दी कला नाम बाणी ते शब्द दा आसरा बख्शन। आओ हुण कुछ समय वास्ते सतकारयोग ज्ञानी दर्शन सिंह जी आप जी नाल कथा द्वारा मुखातब होंगे। प्यार से श्रवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

दूर ना जान हो, जिन हिरत न राती, नाम त्याए ता सुख पाए, बिन आवै पिड़काची। जिन थापी बिद जान सोई, क्या को कहै बखाणो, जिन जग थाप बताया जालो, सो साहिब परवाणो।

जो बाजीगर पर मैं भूला झूठ मुठी अहंकारो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रते गुर पूरा राखे नानक सहज सुभाए।

0: कौन न मरसी दे मां बाप अनुसार कुछ दिन पहला सरदार सुरिंदर गिल साहब संसार की यात्रा करते हो परिवार में सतीवा बिछोड़ा दे गए तिना की अंतम अरदास अपना सारे गुरुद्वारा साहब एकत्रित हुए हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई जड़ा भी जीव संसार ते आंदा है समय मुताबक वह संसार तो चलिया जाता है ये उस मालिक दी वाहिगुरु दी रचना है सो इसे ही कुदरत दे कानून अनुसार सरदार सुरिंदर सिंह गिल जी संसार यात्रा करदे चलाना कर गए तिना दी आत्मक कल्याण वास्ते आत्मक शांति लई अंतम अरदास अपन सारे ने जुड़ना है गुरु पातशाह बख्शिश करन विछड़ी आत्मा नूं आवागमन दे गेट तों बचाउंदे हुए परिवार नूं भाणा हुंदा बल बख्शन जी उन्होंने मित रखे सहज पाठ के हम भोग पैणगे सो आप सतगुरु साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी के उच्चारण के तई श्लोक सरवण करिए जी उन्होंने भुल बख्श देनी
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी राणा राओ ना को रहा रंग न तुंग फकीर वारी आपो अपनी

बेबान हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सत गुर बोलिया हर

तीर्थ फिरथ प्रभ आया पर्याता शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए सुख अटल गुरु सेवी है एन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों झटी है तुद दिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी खटी है

बिरला कहु पावै संग, एक वस्त दिजै करमया, गुर प्रसाद ना जप लिया, ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहया सरसमाय। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटाओ

चेना जापत तब हर के सोग को किसे व्यापत जावे अपने आप आप आर ब्रह्म तब मोह का किशोद परमा।

कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रसह स्वभाव तब शिव शक्त कहो कदठाय। जब आपै आप अपनी जोत रै तब कवन निडर कवन कत रै। आपन चलत आप करना हार।

था जन्म मरण कहो का विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कहो के जोए। जब अवगत गोचे प्रभु का ताचित गुप्त कहीं पूछ लिखाओ, जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, आपन आप ही अजर जाओ नानक आपन रूप आप ही उपर जाओ।

लोग सुखी हैं पर लोग सोले नानक हर प्रभु आपे मेल साध संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो हजार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तन का एस गाओ आठ पहर प्रापे को नेरा मिठी अज्ञान बिसे अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसाओ मन छे नानक फल पाओ हालत पलत दोले सवार राम नाम अंतर उड़दार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साज बरिखिया मन तन नाम जपो लिवलाय दुख

होए आप मलाए ले प्रवसो ओ तानवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस भगवंत तन तन तन जा